0: रेडियो अरुण अरुण
1: 97.6 MHz
0: हरपल
1: तपाईसँगै।
2: रेडियो अरुण टाइम चेक
3: इट्स 8 AM
4: अहिले बिहानको 8 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हर पल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: इट्स 9 AM
3: अहिले बिहानको 9 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हरपल हर तपाई सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: इट्स 10 AM अहिले बिहानको 10 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हरपल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: It's 5 PM
3: अहिले अपराह्नको 5 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण
1: 97.6 MHz हरपल तपाईं सँगै
2: रेडियो अरुण टाइम चेक
3: 6 PM
4: अहिले साँझको 6 बज्यो।

0: रेडियो अरुण
1: अरुण
0: 97.6 MHz
1: हरपल
0: हर तपाईं सँगै।
2: रेडियो अरुण टाइम चेक 8 PM
3: अहिले रातको 8 बज्यो।

0: सुजित जिमी धर्मदेवी नगरपालिका दुई तामा फोक संखुवा सभा हाल कटार।
1: नवीन गुरुङ पाँच खपन नगरपालिका नौ संखुवा सभा हाल मलेसिया।
0: शुक्रराज यखा चैनपुर नगरपालिका दस खरान संखुवा सभा।
1: गजेन्द्र जिमी चैनपुर नगरपालिका एघार महाकोट संखुवा सभा।
0: सन्तोष काफले सदानन्द नगरपालिका आठ दिङला भोजपुर।
1: सुरज राई तुम्सा पोवादुम्मा गाउँपालिका पाँच भोजपुर हाल मलेसिया।
0: र सुमिता याखा लिम्बुखिम चैनपुर नगरपालिका दस खरान संखुवा सभा।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हरपल हर तपाईं सँगै
1: रेडियो अरुण टाइम चेक इट्स 9 PM
2: अहिले रातको 9 बज्यो।